0: LUMEA.io 289-982-9597 289-982-9597
1: मैं थोड़ा अपना वकील वकील ब्रिज मोहन पिछले 32 सालों तो अक्रॉस कैनेडा कार एक्सीडेंट्स लगियां गंभीर सट्टा पुलिस द्वारा लाए गए संगीन क्रिमिनल चार्जेस अते सीरियस इमिग्रेशन केसेस नाल कोर्ट कचहरियां च निजिठण दा साडा पूरा तजुर्बा है। कार एक्सीडेंट्स दे विक्टिम्स ने कदे भी सट लगन अते अपनी जिंदगी बदलन लई नहीं सी आख्या, पर हुण ओ इंसाफ दी मांग करदे हन अते मैनूं इह कहंदे होए बहुत ही मान महसूस हो रहा है कि असी कानूनी अदालत विच उस इंसाफ नूं प्राप्त करन च उहनां दी ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵਕੀਲ ਵਕੀਲ ਬ੍ਰਿਜ ਮੋਹਨ ਕੰਟੈਕਟ ਅਸ ਐਟ bridgemohan.com।
0: सेंट्रल मिसिसागा दे रहण वालेओ ए मौका ना गवाओ। बैलीमोर होम्स वालों डेरी लेन टाउन्स जल्द ही डेरी रोड वेस्ट अते हरंटेरियो ते आ रहे ने। कंटेम्पररी टाउन होम हाई $700,000 तो शुरू हो रहे ने। सीमित समय ले HST दे विच खास बचत दा फायदा लाओ। हाईवे 401 407 अते 410 गो ट्रांजिट शॉपिंग अते पियर्सन एयरपोर्ट तो सिर्फ कुछ मिनटां दी दूरी ते। सब तो पहले बायर्स दे विच शामिल होने दा मौका ना गवाओ। आज ही रजिस्टर करो ballymorehomes.com BALLYMOREHOMES.COM।

0: सर्दी के दिन आने वाले हैं। अगर आप ओंटारियो में रहते हैं और आपकी आमदनी तय सीमा के अंदर है तो आप एनब्रिज गैस से मुफ्त इंसुलेशन, ड्राफ्ट प्रूफिंग और दूसरी सुविधाओं का फायदा उठा सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए enbridgegas.com/winterproofing पर जाएं। नियम और शर्तें लागू।
1: This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.

0: मार्केटिंग करके देख ली पर कोई रिजल्ट ही नहीं आया।
1: एदा मतलब तुसी रेडियो आवाज ट्राई नहीं कीता।
2: रेडियो आवाज, रेडियो आवाज रोजाना सवेरे 9 to 10 बजे तक, एवरी सैटरडे 10 to 1 बजे तक, प्राइम टाइम ते। वधेरे जानकारी लई तुसी कॉल कर सकते हो 416-518-3200।
3: पापा पापा सुनते क्यों नहीं, चॉकलेट लेनी है।
4: अजी सुनते हो, कहाँ गुम हो?
5: अरे महेश अभी तक ऑफिस नहीं आए, पता नहीं मीटिंग थी। हेलो हेलो हेलो।
1: जब मैं रेडियो आवाज सुनता हूँ तब तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। बम्प टू बम्प ट्रैफिक एंड बम्प टू बम्प कॉल्स, ऐसा ही होता है जब आप सुनते हैं हर सुबह 9 to 10 मंडे टू फ्राइडे एंड सैटरडे 11 to 1 रेडियो आवाज।
6: ऑटो ओन

0: जी हाँ मोटर कार का तो मालूम नहीं लेकिन आपको आपके बंगले तक पहुँचाएंगे जी यानी मॉर्गेजेस के मयंक भटनागर जी। हर तरह की मॉर्गेजेस में करते हैं स्पेशलाइज, वो रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, प्राइवेट हो, फर्स्ट या सेकंड मॉर्गेजेस और या फिर आप हैं फर्स्ट टाइम होम बायर। मयंक भटनागर जी 6477022023 6747702 V23।
1: लाइसेंस नंबर 10394।
2: ब्रैम्पटन वासियों, हुण बदलाव दा समां है, हुण तुहाडी आवाज सिटी हाल तक पहुंची। सुरक्षा पहली तरजीह, वध रहे प्रॉपर्टी टैक्सा ने परिवारां ते बहुत वड्डा बोझ पाया है। मैं टैक्सा विच राहत लई पूरी पूरी कोशिश करांगा, हद तो वध वधी हुई माइनर वेरियस फी नूं ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹਾਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੀ ਤਾਕਤ। ਪ੍ਰੇਮਪਾਲ ਗਿੱਲ, ਰੀਜਨਲ ਕੌਂਸਲਰ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 2 ਅਤੇ 6 ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ। ਧੰਨਵਾਦ।
3: ब्रैम्पटन सिटी काउंसिल वार्ड 9 अते 10 लई भरोसे योग उम्मीदवार डॉक्टर आजाद गोयत नूं अपना कीमती वोट पाओ।
4: डॉक्टर आजाद गोयत जिन्ना मुद्दा लई जनता दा साथ देणगे, उन्हां च अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी अते पब्लिक कंसल्टेशन, प्रॉपर्टी टैक्सेस विच कटौती, क्राइम ते एक्सटॉर्शन ते कारवाई, वड्डे बिजनेसमैन अते पॉलिटिशियंस दा नेक्सस तोड़ना, लोकल डिवेलपमेंट, नाली वार्ड नंबर 9 ते 10 लई गो स्टेशंस नाल कनेक्टिविटी, फुल पुलिस स्टेशन, इंडस्ट्रियल डिवेलपमेंट, ग्रीन स्पेसेस दी मेंटेनेंस शामिल है।
3: इलेक्शन डेट 26 अक्टूबर 2026, एडवांस वोटिंग ऑन 9, 10, 11, 16 and 17 अक्टूबर। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट azadgoyat.ca। पेड फॉर एंड ऑथराइज बाय कैंपेन ऑफ डॉक्टर आजाद गोयत।
5: ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਲਨੈਸ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਐਂਡ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਕੋਂਬੋ ਪਲਾਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ $99 ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 647-7653-4 6 4 7 7 6 5 2 3 4 0।
6: You're listening to Gumtaz Radio on AM 530 from 10 to 11 a.m. Monday to Friday with Jazz Tagar, your favorite show.

O पैसा जरा लाना, ओ पैसा जरा लाना, लाना लाना, ओ पैसा जरा लाना, आज पहली तारीख है, खुश है जमाना।

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारिया आइटमां डॉलर 475 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन पिस्ता रसगुल्ले और जस्ट डॉलर 5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असीं लैके आए हैं कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026। 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने। 2 इन ब्रैम्पटन, 1850 एल्बन रोड, ईटोबीको। वधेरे जानकारी लई कॉल करो 416-213-1165 ते 416-213-1165।
1: मैं हरसिमरन सिंह, साडा शहर ब्रैम्पटन वध रहा है पर की साडियां सेवावां भी उसे रफ्तार नाल वध रहियां ने। पुलिस, पैरामेडिक्स, रीजनल रोड्स, पानी अते सुरक्षा सेवावां लई तुहाडी आवाज रीजन तक पहुंचाउणा मेरी तरजीह है। वार्ड 9 अते 10 तों आई एम कैंडिडेट फॉर रीजनल काउंसलर। आउण वाली 26 अक्टूबर नूं वोट फॉर चेंज, वोट हरसिमरन सिंह।
2: ऑथराइज्ड एंड पेड बाय द कैंपेन ऑफिस ऑफ हरसिमरन सिंह।
3: आज
4: बॉलीवुड मूवीज ने टीवी शोज वेब सीरीज हिंदी पंजाबी लाइव टीवी चैनल्स इंजॉय करन नू वर्ल्ड्स बेस्ट ते हाईएस्ट क्वालिटी वाला आईपीटीवी बॉक्स है। ते नाले टिलो वीडियो कोल गुरबानी रेडियो भी है ते डिलीवरी बिल्कुल फ्री। होर दस क्या चाहिदा जी। सेलिब्रेशन 40 इयर्स इन एंटरटेनमेंट बिजनेस।
5: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन।
4: पर टिलो वीडियो ते जदों मर्जी आ जाओ। एबनीजर एंड गोर रोड 905-204-1313 जां tillovideo.com। होर कोई सेवा।
6: ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਪਲਾਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੈਲੂਲਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਿੰਗਸ, ਬੈਸਟ ਫੋਨ ਪਲਾਨਸ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਪਲਾਨਸ ਚ ਸੇਵਿੰਗ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਨੋ ਕੰਟਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਜਾਂ ਲੇਟੈਸਟ ਫੋਨ ਚਾਹੀਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਕਵਰੇਜ ਨਾਲ, ਸੈਲੂਲਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ। ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਸੈਲੂਲਰ ਪੁਆਇੰਟ, ਸੇਵ ਟੂਡੇ, ਇਟਸ ਦੈਟ ਈਜ਼ੀ। ਆਪਣੀ ਨੀਅਰੈਸਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨ cellularpoint.ca ਤੇ ਵੇਖੋ। ਸੈਲੂਲਰ ਪੁਆਇੰਟ, more phones, more plans, more choice.
7: ਘਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਅਪਲਾਈਐਂਸਿਸ ਵੀ ਹਾਈ ਐਂਡ ਹੀ ਲੈਣੇ ਆ।
8: ਹਾਂ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟੀਵੀ ਐਂਡ ਅਪਲਾਈਐਂਸਿਸ ਹੈ ਨਾ। ਫ੍ਰਿਜ, ਸਟੋਵ, ਡਿਸ਼ਵਾਸ਼ਰ, ਵਾਸ਼ਰ ਐਂਡ ਡਰਾਇਰ, ਐਲਈਡੀ ਟੀਵੀ ਸਭ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਕੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀਆਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਲਾਈਐਂਸਿਸ ਖਰੀਦੋ, ਪੇਮੈਂਟ ਵੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਚ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਆਜ ਦੇ। ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਕਾਲ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟੀਵੀ ਐਂਡ ਅਪਲਾਈਐਂਸਿਸ 905-450-2828-905-450-2828
9: नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे। आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ, जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस, आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज।
10: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129। 35 रेजोल्यूशन ड्राइव, ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा। कॉल 905-460-8888, दैट्स 905-460-8888।
9: सर्विंग फ्रॉम 2 लोकेशंस, बेस्ट सर्विस, बेस्ट प्राइस, स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ।
11: यार इना इंश्योरेंसा ने ते धुआं कढ़ाता, वधिया ते जायज रेट कित्थों मिलेगा?
12: टॉप फाइनेंशियल इंक तो, जो अपनी बेहतर ते भरोसेमंद सेवावां लई जाने जांदे ने।
13: क्रिटिकल मॉर्गेज, आरईएसपी, आरआरएसपी, विजिटर इंश्योरेंस, सुपर वीजा, स्पेशल डिसेबिलिटी प्लान फॉर ट्रकर्स। जे तुहाडे कोल 20 नालों ज्यादा ड्राइवर ने तां तुहानूं अनबीटेबल प्राइस लेके देणगे।
12: कॉल करो 20 सालां दे तजुर्बे वाले सुरजीत सिंह पड्डा जी नूं 647-300-3100-310-0
13: या मिलो 70 डेल्टा पार्क बुलेवार्ड यूनिट 11 ब्रैम्पटन।
14: मैं बलजिंदर सिंह नहल, अपने ब्रैम्पटन ने सब कुछ देखा है, सड़कां तो पार्कां तक, ट्रैफिक तो सिटी सेवावां तक, क्राइम तो करप्शन तक। चंगा शहर सिर्फ वादियां नाल नहीं काम नाल बनता है। तुहाडे मुद्दे सिर्फ चोणां तक नहीं सिटी हाल तक लेके जाना मेरी जिम्मेवारी है। वोट फॉर चेंज, वोट फॉर बलजिंदर सिंह नहल, सिटी काउंसलर कैंडिडेट, वार्ड 9 एंड 10।
2: ऑथराइज्ड एंड पेड बाय द कैंपेन ऑफिस ऑफ बलजिंदर सिंह नहल।
15: You're listening to Punjabi Versa, Monday to Friday, 11 a.m. to 12 p.m. For more information, call 647-448-1000. Toronto's number one station, AM 530.
16: Punjabi Versa!

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारिया आइटमां $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन, पिस्ता, रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए हैं कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026। 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने। 2 इन ब्रैम्पटन, 1850 एल्बम रोड, ईटोबीको। वधेरे जानकारी ले कॉल करो 416-213-1165 ते 416-213-1165।
1: इंतजार हुण खत्म होया। रीमैक्स गोल्ड रियल्टी दे गौडी खुमान लेके आए हन साउथ कैल्डन विच प्रीमियम रिटेल अते ऑफिस स्पेस खरीदण दा एक होर सुनहरा मौका। पेश है कैल्डन कमर्शियल सेंटर, हाईवे 10 अते हाईवे 410 दे प्राइम इंटरसेक्शन ते 15 एकड़ विच बन रहा एक नवा कमर्शियल डेवलपमेंट। रिटेल अते ऑफिस यूनिट्स हुण सेल लई अवेलेबल हन। कैल्डन दी इस नवी कमर्शियल डेस्टिनेशन विच अपनी स्पेस अज ही पक्की करो। अपनी यूनिट अज ही बुक करन लई साडी टीम नाल कॉन्टैक्ट करो।
2: मैं हरसिमरन सिंह। साडा शहर ब्रैम्पटन वध रहा है पर की साडियां सेवावां भी उसे रफ्तार नाल वध रहियां ने। पुलिस, पैरामेडिक्स, रीजनल रोड्स, पानी अते सुरक्षा सेवावां लई तुहाडी आवाज रीजन तक पहुंचाउणा मेरी तरजीह है। वार्ड 9 अते 10 तों आई एम कैंडिडेट फॉर रीजनल काउंसलर आउण वाली 26 अक्टूबर नूं। वोट फॉर चेंज, वोट हरसिमरन सिंह।
3: ऑथराइज्ड एंड पेड बाय द कैंपेन ऑफिस ऑफ हरसिमरन सिंह।

बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, तो इसीलिए अपने अपने टिकट बुक कर लो ताकि इस बार इस शो मिस ना करो। सो मिलते हैं फिर 11 अक्टूबर नो टोरंटो रोज थिएटर शाम नो 7 बजे।

0: ताजियां सब्जियां फ्रेश फल फ्रूट वधिया ग्रोसरी ते इंडिया तो आया तुहाडा मनपसंद समान मिलेगा हुण वधिया रेट्स ते क्योंकि तुहाडे अपने शहर विच आ गया अनाज मां रोज दी ग्रोसरी होवे चावल दाला आटा देसी घ्यो मसाले टी स्नैक्स या फिर इंडियन किचन दा कोई भी जरूरी समान सब कुछ मिलेगा अंडर वन रूफ फ्रेशनेस वैरायटी क्वालिटी ते वधिया प्राइसेस ले अज ही विजिट करो अनाज मां एयरपोर्ट रोड एंड मेफील्ड रोड दे कॉर्नर ते एट 6141 मेफील्ड रोड यूनिट
1: नजर बदलो नजारे बदल जाएंगे आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज
2: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129 35 रेजोल्यूशन ड्राइव ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा कॉल 9054608888 दैट्स 9054608888
1: सर्विंग फ्रॉम टू लोकेशंस बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ
3: मित्रां दे जंक्शन ते
4: ओ केड़े जंक्शन ते
5: इक्का जंक्शन ब्रैम्पटन ते
3: रात लगियां महफलां रे
5: भाई महफलां ते रोज ही लगदियां ने इक्का जंक्शन ब्रैम्पटन ते इक्का जंक्शन ब्रैम्पटन ते आओ ताजा स्वादला खाओ ते 100% दी कैपेसिटी वाले शानदार बैंक्वेट हॉल विच अपनियां खुशियां दे जश्न मनाओ इक्का जंक्शन ब्रैम्पटन करदे ने केटरिंग बिग और स्मॉल विद लाइव फूड ट्रक 11 AM टू 6 PM Drinks 50% off. Tikka Junction Brampton te call karo 647-429-4040 Tikka Junction Brampton.
6: ਓ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੜਦਾ ਸੀ ਓ ਮੇਰੀ ਲੁੱਕ ਤੇ ਮਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲੱਕ ਤੇ ਮਰਦਾ ਸੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰੋਸ਼ਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਵਰਤੋਂ ਦੂਰ ਰੇਡੀਓ

0: को थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूं।
1: बारिश हो रही है, ये बारिश ना होती तो भी ना आती।

0: radio program Days per Days, the Mayfield and Andrea, we were junior Friday. ਦੋਸਤੋ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਿਆ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਕੀ ਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਈ ਨੇਚਰ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕੁਛ ਖਵਾਉਣ ਨੂੰ?
1: ਬਿਲਕੁਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਈ ਨੇਚਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ ਅਤੇ ਲਾਈਵ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੀਆਂ ਜਲੇਬੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਅਤੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਬੜੀ ਵੀ ਐਡ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਈ ਨੇਚਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਣਦਾ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਜਵਾਬ ਖਾਣਾ ਇਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਡਾਈਨ ਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਟੇਕ ਆਊਟਸ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਡੀਲਸ ਵੀ ਦੇਣਗੇ। ਇਨ ਸਾਈਡ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਡੀਲਸ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਐਵਰੀਡੇ ਡੀਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਖੋਏ ਦੀਆਂ ਮਿਠਾਈਆਂ, ਡਰਾਈ ਫਰੂਟਸ ਵਾਲੀ ਮਿਠਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਪਿੰਨੀਆਂ ਵਗੈਰਾ, ਹੁਣ ਵਿੰਟਰ ਸੀਜ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ਪਿੰਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਈ ਨੇਚਰ ਵਾਲੇ। ਪਹੁੰਚੋ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਐਵਰੀਡੇ ਓਪਨ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੀਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 58 ਕੁਐਰੀ ਐਜ ਡਰਾਈਵ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਵੇਡ ਐਂਡ ਹਰ ਅੰਟਾਰੀਓ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੋਕੇਟਡ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਰਡਰ ਪਲੇਸ ਕਰੋ। ਨੰਬਰ ਹੈ 905-793-5300, 905-793-5300 'ਤੇ ਕਾਲਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਨਸਾਈਡ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਡੀਲਸ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਟੇਕ ਆਊਟ ਵਾਲੀਆਂ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਟਰਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਓ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਈ ਨੇਚਰ ਦੀ।
0: ਪੀਰਸਨ ਕਿਚਨ ਕੈਬਨਿਟ ਅਤੇ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਏਜੂਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਨੇ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਚਨ ਕੈਬਨਿਟ ਕਲੋਜ਼ਡ ਬਾਰ ਐਕਟ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਫੈਬਰੀਕੇਟ ਅਤੇ ਕੁਆਡਸ ਕਾਊਂਟਰ ਟਾਪ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੀਡਿੰਗ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਰੂਮ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਫੈਕਟਰੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ, 271 ਗਲਿਡਨ ਰੋਡ ਅਤੇ ਕਨੇਡੀ 'ਚ ਗਲਿਡਨ ਨੇੜੇ ਨੇ। ਨੰਬਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 647-400-4550, 647-400-4550 ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਅਗਲੇ ਸਪੋਂਸਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਇਨ ਕਰੀਏ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ।
1: ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਜੁੜੇ ਨੇ ਸਾਰਾਂਸ਼ ਨਾਗਪਾਲ ਜੀ ਯੂਨੀਕ ਗਲੋਬਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਇੰਕ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਪੋਰਟਰ ਲੋਨ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਸਕਿੱਲਸ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਵਿੱਚ ਇਨਰੋਲ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ। ਸਾਰਾਂਸ਼ ਜੀ ਸਵਾਗਤ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
2: तीन फैमिलीज, उनकी बिग फैमिलीज थी तो उनको 178,000 डॉलर्स तक का एस्टीमेट आया है।
1: हाँ जी।
2: ओके, पीआर सिटीजन प्रोटेक्टेड पर्सन, ओंटारियो में आप कहीं भी रहते हैं, नो एज लिमिट, नो क्रेडिट चेक, कोलैटरल फ्री लोन मिल रहा है आपको, बैंक नहीं दे रहा, गवर्नमेंट दे रही है सीधे आपके खाते में। हमें आप अभी कॉल करें, प्रॉपर ऑफिस आप स्किल डेवलप करते हैं, आसान से कोर्स करते हैं, फुली ऑनलाइन है, फोन पे लैपटॉप पे आप क्लास लगाते हैं, सर्टिफिकेट भी आपको मिलता है अकाउंटिंग का, बिजनेस मैनेजमेंट का, एंड साथ में आपके खाते में डेढ़ से दो महीने में 50,000 से 1,70,000 डॉलर तक आ जाता है।
1: जी, जिहड़ी इह फंडिंग आपां नूं मिलदी है, जिहड़ा लोन मिलदा है, इहनूं आपां कित्थे कित्थे स्पेंड कर सकदे हां, कित्थे खर्च कर सकदे हां, ते इहदा सब तों ज्यादा फायदा किस नूं हुंदा है?
2: हाँ जी, सो जिनकी फैमिली साइज ज्यादा है, जिनका फैमिली ऑफ फाइव को 170,000 डॉलर, फैमिली ऑफ फोर को, हस्बैंड वाइफ दोनों पढ़ते हैं, आसान से फुली ऑनलाइन कोर्स करते हैं, जिनमें एग्जाम्स नहीं है, असाइनमेंट्स है इजी, कोई टीचर नहीं है, सेल्फ स्टडी वाले कोर्सेज हैं, जितने ही हाउस वाइफ अनएम्प्लॉयड ऊबर ड्राइवर इस कोर्स को कर रहे हैं, फंडिंग हासिल कर चुके हैं, और आप हमें अभी कॉल करें, प्रॉपर ऑफिस है 218 एक्सपर्ट बुलेवर्ड पे, कॉल करें, एस्टिमेटली ऑफिस आए।
1: ਜੀ ਸਰਾਸ਼ ਜੀ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਇੰਟਰਸਟ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵਾਪਿਸ ਕਰਨਾ ਲੋਨ ਕਦੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਇੰਟਰਸਟ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ?
2: ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਯਹੀ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਲੋਨ ਕੋ ਸਬਸੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬਣਾਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਬੈਂਕ ਗਿਆ ਥਾ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬਣਾਨੇ ਕੇ ਲੀਏ, ਉਹਨੇ ਇਤਨੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਮੰਗੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਲਿਆ ਪਰਸਨਲ ਗਰੰਟੀ ਲੋਨ ਪੇ ਕਿ ਭਈਆ ਆਪਕਾ ਘਰ ਉਠਾ ਲੇਂਗੇ ਅਗਰ ਆਪਨੇ ਲੋਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਾ ਲੋਨ। ਤੋ ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬੜਾਨੇ ਕਾ ਸੋਚੇ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਚਾਨੇ ਕਾ ਸੋਚੇ, ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਆਪ ਬੈਂਕ ਕੇ ਲੋਨ ਮੇ ਨਾ ਪੜੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਕੋ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰੇ, ਫੰਡਿੰਗ ਹਾਸਿਲ ਕਰੇ, ਇਸਮੇ ਕੁਛ ਵੀ ਚਲਾਕੀ ਮੀਠੀ ਬਾਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਤਨੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਕੋ ਹਮ 8 ਸਾਲ ਮੇ ਅਸਿਸਟ ਕਰ ਚੁਕੇ ਹੈ। ਲੋਨ ਕੀ ਟਰਮਸ दो साल का कोर्स है तो दो साल तक के लोन $1.5 लाख तक जो आपको आ सकता है 0% पे, और 2.5 साल बाद पहली पेमेंट स्टार्ट है इस लोन की। ऐसा कौन सा लोन है जिसकी पेमेंट 2.5 साल बाद स्टार्ट होती है? तब ब्याज दर क्या है? $1 लाख पे सिर्फ साल का $2,500 15 साल में पे कर सकते हैं। हाथ टाइट है तो घर के लोन पे घर उठा लेते हैं, गाड़ी के लोन पे गाड़ी उठा लेते हैं बैंक वाले, बट यहाँ पे गवर्नमेंट दे रही है। अगर हाथ टाइट है तो आपका लोन इंटरेस्ट के साथ डेफर हो जाता है 1 साल 2 साल 3 साल।
1: बिल्कुल, तो ये कोई क्रेडिट चेक नहीं होता या जो लोन जिन्होंने अप्रूव होता है?
2: बिल्कुल जी नहीं, कोई क्रेडिट चेक नहीं होता। गवर्नमेंट आपको फंडिंग दे रही है, दस तक की बेनिफिट इन दिस। और हाँ, आपके क्रेडिट पे शो जरूर होता है लोन, वो तो सारे लोन शो होते हैं, बट क्रेडिट चेक नहीं होता। अगर आपका क्रेडिट स्कोर जीरो भी है, आप आए लोन हासिल करें, कोई नकली कागज नहीं लगते इसके अंदर, ना मैंने आपसे रिश्वत लेनी है ना मैंने आगे रिश्वत देनी है, साफ काम है, साफ तरीके से कर रहे हैं बिना मीठी बातें के। 8 साल में हजारों को असिस्ट कर चुके हैं, आज भी 11 बंदों के खाते में फंडिंग गिर चुकी है, आके चेक कर लीजिए ऑफिस में।
1: जी सर, एक चीज दसो कि जो कोर्सेज ने केड़े कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं, क्लासेस किन्ने किदा लगदी ते तुहाडी फीस किन्नी है?
2: हाँ जी, क्लासेज आप 20 घंटे आपने ऑनलाइन देना है लैपटॉप पे, सेल्फ स्टडी वाले कोर्सेज है, खुद ही आप स्लाइड पढ़ते हैं स्किल हासिल करें, अकाउंटिंग बिजनेस मैनेजमेंट जैसे सोखे जो कोर्सेज में हम हार्ड कोर्स में डील ही नहीं करते, हमें आपकी गाली नहीं खानी, हमने सारे लोगों को असिस्ट कर पाए हैं। फीस कितनी है काम होने के बाद? $199 फ्लैट फीस है, कोई हिडन फीस कुछ नहीं है सर, काम होने के बाद लेते हैं। मैंने भी 120 बंदों से फीस लेनी है, मैंने किसी को पैसे नहीं देने, मैंने लोगों से फीस लेनी है। बैच स्टार्ट हो रहा है 14 अक्टूबर को, मिस ना करें, नहीं तो आपको आपकी ही फंडिंग 1.5-2 महीने डिले हो जाएगी। गवर्नमेंट कट्स कर रही है, पहले फंडिंग हासिल कर ले, नहीं तो जैसे एयरपोर्ट बिक रहे हैं वैसे क्या तक गवर्नमेंट फंडिंग है बंद कर दे। नंबर 437-264-3175 437-264-3175 कॉल करो 437-264-3175 4372643175 नंबर एक और बार प्लीज 437-264-3175।
1: जी बहुत बहुत शुक्रिया,
0: शुक्रिया जी, मेहरबानी। और मैं जो भी इन्होंने देखता हूँ मिलता है ना, ऑलवेज ही हैप्पी स्माइली करते रहते हैं ना, पॉजिटिव गाइए बहुत। नंबर एक बारी दे दिया ना
1: जी, बिल्कुल तुसी नंबर जरूर नोट करो यूनी ग्लोबल एडवाइजरिंग तो सारांश नागपाल जी 4372643175।
0: रेडियो प्रोग्राम देश प्रदेश नाल जुड़े हुए हो दोस्तों, अगला गीत कह नहीं सकते बाहर हैगी है मॉर्गेज किंग वालों तक पहुँचाई जा रही है, और परमजीत सिंह होरां दा लोन लेना, वो कहिंदे फस्ट मॉर्गेज सैकेंड मॉर्गेज लाइन ऑफ क्रेडिट बनाउणी रीफाइनेंस करवाउणा एक्विटी बनवाउणी घर दे विच अपनी प्राइवेट फंड चाहीदा सेम डे क्लोजिंग चाहीदी है, कोई भी अड़िया वड़िया काम कहिंदे कितें हैगा ले आओ, जो कितों गैस स्टेशन का काम अड़िया कि कार वाश का काम अड़िया मैं तुहानूं लोन दवा दूंगा। नंबर इन्हों का हैगा जी 416-804-2015 416-804-2015 1200 Dairy Road दे कोले ने डॉमगंज डेयरी नज़दीक ने, उन्होंने वालों अगला जी भाव वार हैगी जोश वाली पहुँचाई जा रही है जी ब्रह्म इस प्रदेश में जुड़ी जुड़े हुए हैं। चलो AM 530 तो मैं लगता दोबारा फिर क्लिक करके देखते हैं कि होंगे कभी रेडियो प्रोग्राम देश प्रदेश नाल जुड़े हुए हैं AM 530 तो। टेलीफोन नंबर है स्टूडियो 905-564-6644। कोई गल नहीं, आप नहीं चल रही तो आप होर ला दें एक बार जी रेडियो प्रोग्राम।